0: ডাক্তার ভূপেন্দ্র কুমার তুলাচন, ডাক্তার বিশাল গুরুং, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ডাক্তার অনমল পৌডেল,
1: ওয়ার্ড আইসিইউ, এনআইসিইউ, জেনারেল এন্ড ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জারি সেবা, পোস্ট অপ সেবা, ফিজিওথেরাপি, ইন্ডোস্কোপি, ক্লোনোস্কোপি, ইকো, টিএমটি, হলচার, পিএফটি, ইউরোফ্লোমেট্রি, ডায়ালিসিস সেবা র আঁখা উপচার সেবা, চৌবিশে ঘন্টা ইমার্জেন্সি সেবা সাথে অন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারহরু দ্বারা সেবা প্রদান গরিয়েকো জানকারী গরাউদছাউ।
2: চৌবিশে ঘন্টা প্যাথোলজি সেবা উপলব্ধ ছ। বিস্তৃত জানকারী কো লাগি পদ্মশ্রী হসপিটাল এন্ড এলাইড সায়েন্সেস প্রালি, পোখরা নৌ নিউ রোড, ফোন 061-592-162-592-163।
3: क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार विराटनगरमै, सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार, शल्यक्रिया, रेडिएसन सहित न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन्। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो खोल्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर वन क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97-61-00-25-30।
4: घरेको भए होइन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
5: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
6: मोबाइल अपग्रेडमा खर्च गर्नुहुन्छ? घुम्न जान बचत गर्नुहुन्छ? अब भविष्यका लागि पनि सोच्ने कि?
7: एनएमबी क्यापिटलको एसआईपी, हरेक महिनाको सानो लगानी भोलिको ठूलो सम्पत्ति। एनएमबी क्यापिटलको वेबसाइट वा नजिकैको एनएमबी ब्याङ्कको शाखामा गई आजै एसआईपी सुरु गर्नुहोस्। अटो डेबिट सुविधा भएको एनएमबी क्यापिटल एसआईपी, पैसा बढ्ने स्मार्ट तरिका।
8: एसआईपी मार्फत म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले योजनाको विवरण अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुहोला।

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो पियू ना
1: पियू ना लाई चिसो उठाओ हॉटे
2: ओले गर्मी मनाया ट्रिक
1: रिफ्रेशमेंट बार न्यूट्रिशन मीट
2: चिसो हॉट।

0: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಘ ಸದೈ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್.
1: हरेक वर्ल्ड कप यो वर्ल्ड कप नहीं करो सेलिब्रेट मिनी सब जेनरेशन हिमस्टार टीवी खरीद करना पाने 32% सम्म को कैशबैक वर्ल्ड कप 2026 को टीवी सीजन पास र एक वर्ष को नेट टीवी पैक शर्तहरू लागू हुने छन् हिमस्टार टीवी उही सेलिब्रेशन हरेक जेनरेशन
2: हिमस्टार फॉर अ कम्प्लीट होम

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होपलाइन 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारे खाना किनानी खनि तोला
2: खनाई दिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाती दुकान महेन्द्र पुलाडी तोला
1: ए नै स्याबा मार दोकान पो मोना नै प्रेसोलाई नि च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस टिक्री हार तान चनै तो हो नि जगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिस्यानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
2: हजुर किने झोकोलाई नि छ्याबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिस्या वा चुवल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट नलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जगा मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: तमुताई रवा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल ती बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

0: तपाईं यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला साँझको छ बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: कोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड नक्कली देखि सावधान जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला टिकाउ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम
1: रेडियो अन्नपूर्ण 93.4

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला रातिको 9 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: Faretwa kie nagari pokrama, Metro City Hospital Prali, Sirjanasok Pokrali, Bibina Kisimka, Bisasagya Chikitsak Sewarko, Upachar Lyaeko Jankari Garaudachau.
1: Hamra Sewaharu.
0: Heart Jodne, Nasatata Merudanda Rog.
1: General Surgery, Sabai Prakarka Operation Sewa.
0: Mirgaula, Tata Mutra Rog, Euro Surgery.
1: Pet, Chati, Mutu, Thairakaka Madumiharu.
0: Neuro Surgery Sewa.
1: Bal Rog.
0: Nakkan Tata Ghati Rog.
1: Manasik Tata Isnayu Rog.
0: Prasuti Tata स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दांत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिब्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: Endoscopy, ECG, EEG, PTA,
1: Physiotherapy, Uroflowmetry,
0: Chemotherapy,
1: Surachit Garbhavatan Sewa,
0: Whole Body Checkup Health Package,
1: Metro City Hospital Prali, Pokhara R. Srijanachok Kaski,
0: Phone 061 572 648 572 849